और समझ क्या आपने सुना था कि मैंने क्या कहा था कि आज क्या करना है, दुश्मनी की भी बात करनी है, इंसान मैंने कहा कि दुश्मन है एक दूसरे के, लेकिन ये किसी और तरह की दुश्मनी है। और इतिहास भी बना है, महिलाओं ने कहाँ इतिहास बनाया है ये भी मैंने आपसे पूछा है, और अपनी लड़कियों ने इतिहास बनाया है, मतलब हिस्ट्री में लिखा जाएगा क्या हुआ है। और समय आज की प्लेलिस्ट पहले तो 70 के 60 70 के नए नए गाने, मतलब कि इतने पुराने नहीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता पुरानों की तरफ चले जाएंगे। मुहावरा आएगा, आपको बता दूंगी किस लफ्ज पर है आज का मुहावरा, वो भी मैंने कल सोच लिया था। सबसे पहले किसने हमें याद किया है, और वो हैं प्यार अली भाटिया, रेजिंग द बार फॉर हाउ यू शुड बी ट्रीटेड बाय अदर्स, नॉट सेटलिंग फॉर एनीथिंग बट द बेस्ट। ओके ग्रेट। अब रूपल, रूपल वन लाइन, झूमता मौसम मस्त महीना, या बहुत ही अच्छा गाना है, आपको याद आ रहा है ना, वो भी कर लेते हैं तैयारी। और याल्ला याल्ला दिल देगी, इसमें जो लाइन है आपको बड़ी पसंद है, बड़ी अच्छी बात है। आपने कहा इसमें शमी कपूर और माला सिन्हा थे, गाना मैं ढूंढती हूँ।

0: मैंने एक दुश्मनी की खबर मैं आपको दे रही थी, देने वाली थी, फिर दूसरी भी मेरी सामने से गुजरी है और वो भी न्यूज़ मैं आपको दूंगी जानवरों की। लेकिन रमेश हरिया ने याद दिलाया है कि देखो आज कृष्ण सर्वे का जन्मदिन है, तो कृष्ण सर्वे को ऑफ कोर्स हमें रोज़ाना वो प्रोग्राम सुनते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, और बरसों से जब से हमने शुरू किया है तब से, तो उनकी तो बर्थडे धूमधाम से मनानी है। साथ आपने कहा है कि रेखा और रोहित अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं, गुड विशेस टू देम, हैप्पी एनिवर्सरी। और यहाँ पर आई हैं, नहीं, रूपल ने कहा है कि फिल्म उजाला का झूमता मौसम मस्त महीना बहुत ही खूबसूरत गाना ज़रूर आपके लिए। और सलमा अहमद,
1: जात का घमंड एक दिन मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन अच्छा किरदार हमेशा याद रह जाता है। रब ने सबको एक ही मिट्टी से बनाया है, फिर इंसान ने चाक पात का फर्क क्यों बनाया है। इसीलिए दोस्तों ये भी सोच लो, किताबें सिर्फ मालूमात नहीं देती, वो इंसान को अपनी गलतियों से पहले दूसरों की गलतियों से सीखना सिखा देती है, और ये ही इल्म की सबसे बड़ी कीमत है। शुक्रिया, सुबह का प्यार सलाम, सलमा अहमद किसुम।
0: और आगे हैं अमीर अली राना, कहते हैं कि देखो किसी को नफरत है मुझसे, कोई प्यार करे बैठा है, किसी को यकीन नहीं मुझ पे, कोई एतबार कर बैठा है। खैर कितने जालिम है ना ये दुनिया, कोई मिलना नहीं चाहता और कोई इंतजार कर बैठा है। वाह क्या बात है अमीर अली, ग्रेट। कहते हैं कि देखो कहाँ कहाँ कितना कुछ होता है, किसी को नफरत है मुझसे, कोई प्यार कर बैठा है, और किसी को यकीन नहीं मुझ पे, कोई एतबार कर बैठा है। कितनी जालिम है ये दुनिया, कोई मिलना नहीं चाहता और कोई इंतज़ार कर बैठा है। वाह अनयूजुअल आपकी भी कंट्रीब्यूशन होती है अमीर अली राना। मंगलवार की मंगल कामनाएं हमेशा भेजते हैं भरत गंगाराम फ्रॉम लंदन, मंगल कामनाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और रसिला कहती हैं कि आपको याद है प्यारे लाल, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, अब प्यारे लाल की बीवी हैज़ डाइड, 78 साल की उम्र थी। बहुत अच्छे, शुक्रिया आपने बताया कि उनका आखिरी, उनकी आखिरी रस्म भी हो चुकी है।
2: हेलो परवीन जी, अस्सलाम वालेकुम, रेखा शाह बोल रही हूँ, आप कैसी हो? सबसे पहले तो बेमिसाल अंदाज के सभी लिसनर्स को हैप्पी ट्यूसडे बोलना चाहती हूँ। और दूसरा परवीन जी, आज मेरा हस्बैंड रोहित और मैं हमारी वेडिंग एनिवर्सरी हम मनाने जा रहे हैं, तो परवीन जी मैंने रोहित जी के लिए एक गाना डेडिकेट किया है, तो आप उसके लिए ये गाना ज़रूर लगाना। हमें मालूम है इतने सारे लोगों को ये गाना पसंद है। गाने का वर्डिंग्स इस तरह से है, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल हो जाए। ओके थैंक यू बाय।
0: ये है ना कि ये गाना मेरे 8 मिनट खा जाएगा, ये बात है ना, तो टाइम होता नहीं है हमारे पास, पर ज़रूर आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है तो ये तो काम करना पड़ेगा। मंजुला विश्वकर्मा,
3: सबको नमस्कार। परवीन जी जरा देर हो गई थी, आप कुछ बोल रहे थे, कुछ इतिहास रचा है, तो मुझे लगता है आप ये बोल रहे, पूछ रहे हैं कि लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान में भारतीय महिला टीम ने इतिहास बनाया है, इंग्लैंड को 270 रन से टेस्ट मैच में हरा दिया है, शायद आप इसी की बात कर रही हैं।
0: आप कैसे रॉन्ग हो सकती हैं मंजुला विश्वकर्मा फ्रॉम लंदन। समीन आपने सुना, उन्होंने लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम की बात की है, वहां पर क्या हुआ, इस ग्राउंड पर इतिहास बनाया है भारत की महिलाओं ने। वाह क्या बात की है, उन्होंने किसको हराया है, इंग्लैंड को 270-72 कुछ रन्स के साथ। वाह विमेन्स क्रिकेट में ये, थोड़ी और भी तफसीलात आपको दूंगी आगे। पर एमएल विश्वकर्मा कहते हैं कोट ऑफ द डे इज ब्लेस ब्रिंगिंग लव टू एवरी सिंगल सोल, अच्छी बात है। और प्यार अली भाटिया,
4: रोहिन जी तेरे चेहरे से नजर, ये गाना फिल्म कभी कभी का है, जिसको किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया है, और जिसकी धुन खयाम ने बनाई है, और जिसको शकीब अदाउने ने लिखा है। गाना अच्छा लगा, सुनाने के लिए आपका शुक्रिया।
5: This is East FM, Kenya's premier Asian mix.
6: East FM, Kenya's premier Asian mix.
7: It's 10:18.
8: A few weeks ago, we sold 100 tickets for 100 bob. Told people nothing. They trusted us anyway. Turns out, they were right too. On Saturday, July 25th, experience the Agave Affair. Curated tasting, great music, and great company. All happening at KICC. One night, bold flavors, unforgettable memories. Don't watch it on everyone's stories. Be in it. Alibaba tickets are now live at ticketyetu.com. The Agave Affair.
5: Kenya's premier Asian mix means always playing the very best.
7: East FM.
5: This is East FM, Kenya's premier Asian mix.

मुझे लग रहा था कि लता को जरा चिल्लाना पड़ रहा था, पर ठीक है जैसे. और गलती हुई है रमेश हरिया कृष्ण सर्वे की वेडिंग एनिवर्सरी, कोई बात नहीं, उनको वेडिंग एनिवर्सरी विश कर देंगे. पर जिन जिन ने बर्थडे विश किया थैंक यू सो मच. जैसे कि यहाँ पर पर्दे पर रूपल ने भी विश किया है, भरत गंगाराम ने भी विश किया है कि प्लीज़ कृष्ण सारोए को कीजिएगा विश कीजिएगा. और राखी थैंक यू सो मच इंडीड. लंदन से रंजन विनोद बहुत खुश हैं, सुन रही हैं म्यूज़िक सुन रही हैं. और आज ब्लैक एंड वाइट फिल्मों का कम होगा म्यूज़िक और ज़्यादा थोड़े आगे के पीरियड का. और समय वो जो तारीख अभी अभी मंजुला विश्वकर्मा बता कर गई हैं, तारीख पहला महिलाओं का टेस्ट खेला गया लॉर्ड्स मैदान में और भारत की हरमनप्रीत कौर की टीम ने इंग्लैंड की टीम को 270 रन से हरा दिया है. समीर कहते हैं पहले तो विमेन्स क्रिकेट तो था ही नहीं, पहली बार महिलाओं को 140 साल बाद मिला मौका यहाँ मैच खेलने का, विमेन्स टेस्ट मैच. तो आईसीसी के चेयरमैन अजय शाह और सचिन तेंदुलकर सारे मैच के दौरान अपनी टीम को चीयर करते रहे. ये बहुत बड़ी बात है विमेन्स के क्रिकेट के लिए. और आगे जो है मैं आपको दुश्मनी की बात थोड़ी देर

0: Pros, save more on what you need to get the job done right. Right now at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt Max 2-tool combo kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.
1: जो है रेखा और कृष्ण सरोय, इन दोनों को मैं एक ही गाना डेडिकेट करती हूँ और हैप्पी एनिवर्सरी. गाने को मुझे थोड़ी देर के लिए काटना पड़ेगा क्योंकि आगे हमारी ब्रेक भी आ रही है.

0: और अब कहती हैं मंजुला गोरसिया कि प्लीज बताइएगा कि कौन से भारत की फिल्म इंडस्ट्री के मायानाज म्यूजिक डायरेक्टर को दुनिया छोड़े 51 साल हो गए 51 years ago. I don't know कि ये कौन है, लेकिन कहती हैं कि आप हमेशा उनका म्यूजिक भी सुनाती हैं, आपको तो पता होना चाहिए. मैंने सोचा नॉट नौशाद, नॉट मे बी शंकर जयकिशन, उनमें से एक, आई एम नॉट श्योर. आप बताइएगा 07011061106 पर कि कौन हो सकता है. लेकिन सब ने विश किया है, दोनों जो कपल्स हैं रेखा और कृष्ण को हैप्पी एनिवर्सरी. जैनुल मोहम्मद आपने, नीला शेथ आपने, सोनल मोडा और शोभना ने, बाकी के नाम पढ़ते हैं और आपको ये भी सुना दें कि मंजुला ने क्या.
1: परवीन जी, मेरा एक प्रश्न है. ऐसा वाक्य, सेंटेंस बताइए जो खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो. छोटा सा है, इसका आंसर बताइए.
0: अच्छा, एक बार फिर सुनना चाहती हूँ कि क्या है.
1: परवीन जी, मेरा एक प्रश्न है. ऐसा वाक्य, सेंटेंस बताइए जो खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो. छोटा सा है, इसका आंसर बताइए.
0: ये भी गुजर जाएगा. मुझे लगता है कि मैंने कहीं पढ़ा था, ये भी गुजर जाएगा. आई एम नॉट श्योर. अगर मंजुला विश्वकर्मा ये ठीक है तो बता दें. और जतेंद्र भी कुछ कहना चाहती हैं, उनकी भी आवाज़ सुन लेते हैं.
2: हेलो पी जी, वेलकम, गुड मॉर्निंग सारा नू. किन्ना सोना गाना वा, तुम देना साथ मेरा, सती दा फेवरेट सीगा.
0: जी सती आपके बेटे मरहूम जो हैं उनका फेवरेट था, खुदा उनको जन्नत में जगह दे. अमीर अली राना, जी हाँ, कल तो इंशाल्लाह ज़रूर. और रेखा शाह, परवीन जी थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग द सॉन्ग. एक्चुअली ये 8 मिनट का है ना गाना, सो इसको मुकम्मल करना ज़रा मेरे प्रोग्राम में. आप कहीं और सुनना चाहें तो ऑफ कोर्स. और रुखसाना, प्रेम कहानी मूवी, आई रिमेम्बर वॉच्ड इट एट शान सिनेमा. प्रेम कहानी, अच्छा तब शाम सिनेमा चर्च नहीं बना था. अच्छा, यस सर, टुडे इन हिस्ट्री, 1789 में क्या हुआ था. समन फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगिंस विद द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टील प्रिजन. जी समन, ये इनकलाब था. तारीख जो फ्रेंच हिस्ट्री की ये तारीख है, इसको बेस्टील डे मनाया जाता है. समन जो जनता थी ना, वो उठ खड़ी हुई, इनकलाब पैदा हुआ. और जनता ने जो हुक्मरान थे, जो गरीबों की जिंदगी अजीरन कर रहे थे, उनके खिलाफ जो मुहिम चलाई है कामयाब, तो 1789 में ये रेवोल्यूशन, ये इनकलाब हुआ था. 1960 में क्या हुआ. यासर कहते हैं कि रिनाउंड फ्रेमेटोलॉजिस्ट जेन गुडॉल अराइव्ड एट द गोम्बे स्ट्रीम रिजर्व इन प्रेजेंट डे तंजानिया में आई 1960 में, July 14th, her long-term observational study revolutionized science when she witnessed chimpanzees stripping twigs to use as tools. कहते हैं कि ये एक primatologist थी, वो आई हैं तंजानिया और वहाँ जाकर उन्होंने जो जांच की है उससे पता चला कि chimpanzees कैसे समिन शाखों को दरख्तों से तोड़ के कैसे उनका इस्तेमाल करते हैं आम जिंदगी में. Forever altering our understanding of the animal kingdom. Yes, sir. Very good information. बहुत अच्छी. और chimpanzees के हंसी पर भी मैंने आपको बताया था कि समय कहते हैं बहुत करीब है इंसान की हंसी chimpanzee की हंसी के, बिल्कुल एक जैसी है. टीना आपने भी विश किया है, दोनों को सोनल आपने भी विश किया है. और साथ मनीष पटेल किसुमु से, आपने कहा है कि एस डी बर्मन, वो हो ऑफ कोर्स एस डी बर्मन, बट ही डाइड ऑन द 31st ऑफ अक्टूबर. ओके क्योंकि वो मंजुला कह रही हैं आज के दिन है उनकी डेथ एनिवर्सरी सो आई वुडंट नो
3: परवीन जी नमस्कार पहले तो वो मंजू विश्वकर्मा जी का आंसर है ये समय भी बीत जाएगा और दूसरा प्रवीण जी वो जो लंदन में कृष्ण सरोज जी के है ना उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं भगवान करे उनको हमेशा ही तंदुरुस्ती दे रितु गुप्ता
0: शुक्रिया आपका और दिनेश भट्ट ने क्रिकेट के बारे में शायद
4: प्रवीणा जी अलैकुम सलाम इंडिया वुमन और इंग्लैंड वुमन का पहला टेस्ट मैच इंडिया वुमन ने 217 रन से जीत लिया है न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज का दूसरा ओडीआई मुकाबला न्यूजीलैंड ने जीत लिया है आज इंडिया और इंग्लैंड की पहली ओडीआई खेली जाएंगी केनिया टाइम 1:00
0: जी अभी जो कहकर गए हैं अभी हमने दिनेश भट्ट से पहले थैंक यू दिनेश भट्ट और ये वक्त भी गुजर जाएगा वही आंसर मेरा और रितु गुप्ता का करेक्ट है हमने मंजुला विश्वकर्मा के सवाल को खराब कर दिया जल्दी जवाब देकर कोई बात नहीं है सविन ये भी एक खबर आई है जो लोग बहुत पसंद करते हैं ना जानवरों में शौक रखने वालों को खतरे से भी खेलना पड़ता है हुआ क्या सविन नेशनल पार्क है जिसका नाम है येलोस्टोन ये अमरीका में है वहाँ एक बाइसन एक तरह की भैंस होती है ये भैंस ने काली काली भैंसें हमारे भी देशों में हैं भैंस ने टूरिस्ट को एक सींग से उठाकर 8 फुट ऊंचा फेंका समझिए ये वाइल्ड लाइफ हम देखने तो जाते हैं लेकिन टूरिस्ट पोते के साथ 100 गज के फासले पर चल रहा था और ये गुस्से में आई हुई थी बाइसन ये भैंस जो थी और सब अगर आप उनकी वीडियो देखो तो भैंस अपना सर टपक टपक के मारती है फर्श पर न जाने किस बात पर इतना उसे गुस्सा था फिर तो वो लोग इससे दूर हो गए दूर से तस्वीर उतार रहे हैं एक पिकअप गुजरती है जिसके बाद ये भैंस लपकती है उन लोगों पर इन दोनों पर जो ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन हैं बुजुर्ग को उठा लिया हालांकि वो भागता है इससे और दरख्त के पीछे छुप जाता है ये पार्क में हुआ है तो छुप जाता है वहाँ से उसको ढूंढ कर और भी जो पेड़ हैं उखाड़ कर ये जानवर अपना गुस्सा उतारता है उतारती है बाइसन थी और हड्डियाँ उसकी टूट गई उसको नीचे टपका बुजुर्ग अभी जिंदा है लेकिन कहते हैं कि सीरियस कंडीशन में है और हम हैं कि इनको देखने इतना पैसा लगाकर इनको देखने जाते हैं

0: और कौन आया मेरे मन के द्वारे, इसकी भी फरमाइश हो गई है। और समिन आंसर था मदन मोहन, कृष्ण सर्वे ने लंदन से कॉल किया और आंसर दिया है कि मदन मोहन को 51 साल हो गए हैं, फल्ला। और जसवीर का जन्मदिन है, जितेंद्र आप मना रही हैं, बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे टू जसवीर, खुदा आपको लंबी सेहतियाब उम्र दे। और एक जो कॉल जो आया है समिन मैसेज, वो सुना दूं आपको।
1: तुम आज आपका रेडियो लग गया, मैं तो सुनती तो सब हूँ लेकिन लगता ही नहीं है, तो दूसरा चैनल लगता है तो वो सुन लेती।
0: अच्छा, असमत हैं मुंबासा से, उन्होंने मैसेज किया है, सुनना चाहती हैं। और मंजुला गोरसिया ने भेज दी है तस्वीर मदन मोहन की, व्हाट अ टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर थे आप। और
2: अपनी तस्वीर को आंखों से लगाता क्या है, एक नजर मेरी तरफ भी तेरा जाता क्या है, मेरी रुसवाई में वो भी हैं बराबर के शरीक, मेरे किस्से मेरे यारों को सुनाता क्या है, पास रहकर भी ना पहचान सका तू मुझको, दूर से देख के अब हाथ हिलाता क्या है, जहन के पर्दों पे मंजिल के हयूले ना बना, गौर से देखता जा राह में आता क्या है, जख्मी दिल जुर्म नहीं तोड़ भी दे मोहरे सुकूत, जो तुझे जानते हैं उनसे छुपाता क्या है, सफरे शौक में क्यों कांपते हैं पांव तेरे, आंख रखता है तो फिर आंख चुराता क्या है, उम्र भर अपने गिरेबान से उलझने वाले, तू मुझे मेरे ही साए से डराता क्या है, चांदनी देख के चेहरे को छुपाने वाले, धूप में बैठ के अब बाल सुखाता क्या है, मर गए प्यास के मारे तो उठा अबरे करम, बुझ गई बज़म तो अब शमा जलाता क्या है, मैं तेरा कुछ भी नहीं हूँ मगर इतना तो बता, देख कर मुझको तेरे जहन में आता क्या है, अपनी तस्वीर को आंखों से लगाता क्या है, एक नज़र मेरी तरफ भी तेरा जाता क्या है। थैंक यू परवीन जी, अमीना फ्रॉम मैनचेस्टर।
0: एक नज़र मेरी तरफ तेरा जाता क्या है, मुझे भी तो दे। अमीना, वेल डन, बहुत अच्छे।
3: This is East FM News, presented by Mark Gittel.
4: President William Ruto is currently hosting the Harambee Starlets and Junior Starlets at State House, Nairobi. Speaking at the event, Junior Starlets Captain Bivalina Ward took the opportunity to advocate for the players' welfare, requesting President William Ruto to prioritize access to affordable housing and comprehensive medical cover for the national team players to ensure their future stability.
5: Now, for now that we are qualified for the World Cup, tunashukuru sana sana for the support umetupea, umetubelieve na hatuwaangusha. So, Mr. President,
4: the Independent Electoral and Boundaries Commission, National Police Service and NCSC will hold a joint briefing today to address preparations for Thursday's Olkalal parliamentary by-election. With campaigns officially concluded, officials will focus on security, electoral integrity and enforcement measures following heightened concerns over violence, voter bribery and intimidation. Campaigns for the Olkalau parliamentary by-election officially ended on Monday yesterday, with leading candidates holding final rallies to rally support ahead of Thursday's vote. The closely contested race now enters the mandatory campaign silence period as voters prepare to cast their ballots. While Interior Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen has assured residents of adequate security before, during and after the election, urging them to vote peacefully and without fear.
6: Wale maskari tumeweka pale, tutaweka maskari hata kama kwa police station naitaji askari 100 tutaweka pale. Kwa sababu tunajua kuna watu wanataka kuleta vuruku, ndio wa blame police na ku blame serikali.
4: A 2-year-old girl has died after consuming poisoned porridge meant for a dog in Tharaka Nithi County. Police say a 9-year-old boy mixed poison into porridge to feed a dog. Before he could do so, the girl drank it while sitting outside the grandfather's house. She collapsed and died shortly afterwards. Police have launched investigations into the incident. The United Kingdom will enforce tougher immigration rules from August 3rd, tightening visa requirements for workers, students, families and visitors. The Home Office says applicants must comply with UK immigration laws and must not be on immigration bail unless they qualify under limited exceptions. The reforms also revise sponsorship rules for skilled workers and strengthen criminality checks as BN seeks tighter control over its immigration system.
3: And that's the news from around the world on East FM. We've got your favorite song for every moment because we love you like that. East FM. FM, Kenya's premier Asian mix.
7: Bemisal Andaz with Parveen Atom.
0: Bemisal Andaz hai, samay dusra ghanta hai. Ab Amir Ali Rana kya kehte hain? Kehte hain ki Parveen ji, Yellowstone National Park is one of the most beautiful parks in the world. The bison, samay jahan maine aapko bataya ki bhains ne utha kar tapka hai ek tourist ko. Kehte hain, the bisons had been on the verge of extinction but was revived and the population is now stable. Kehte hain ki ye bahut kam ho gayi thi bisons. Inko revive karne ke liye ikdamat kiye gaye ki zyada paida hon. Ab the tourists who go there seems that they are invincible and when the animal is on heat, he is dangerous. Okay. Khatarnak ho jate hain, samin ye jo hote hain janwar. Manjula Vishwakarma ne bhi Madan Mohan ka bataya hai ki 51 saal pehle unka nidhan hua tha. So ye answer correct hai, Madan Mohan. Bindu from India, Jaipur. Aapne kaha hai bahut bahut shukriya aur Madan Mohan ki death anniversary. Thank you Bindu. Sonal. Aur ab samin aage maine aapko ek और जानवर की भी खबर देनी है वो जानवर की खबर देने के लिए आपको एक गाना पहले

समन इस तरह के ब्यूटीफुल गानों में मतलब दमदार खुशी के गानों में मैं सोच रही हूँ कौन आया मेरे मन के द्वारे ये मैं कैसे शामिल करूँ मैंने आगे रखा है देखते हैं अगर माहौल बनता है लेकिन पहले दुश्मनी समन मैंने कहा था आपको खबर देनी है दुश्मनी की इंसानों में तो हमेशा है दर नस्ल आती है दुश्मनी लेकिन जानवरों जानवर की दुश्मनी हमसे है अब देखें क्या हुआ आप खुद फैसला करें क्योंकि ये खबर सच्ची है नेपाल में एक परिवार के 14 बरसों में चार लोग एक ही परिवार के मार दिए गए 14 बरसों में 2012 में ये सिलसिला शुरू हुआ मियां बीवी की जान ले ली हाथी ने पांव तले कुचल दिया मियां को और बीवी को पति पत्नी को दो हो गए खानदान वाले इतना घबराए कि वहां से घर ही छोड़ दिया घर छोड़ के 9 मील के फासले पर नया घर बसा लिया समिन इस हाथी ने इनका पीछा नहीं छोड़ा इसका नाम है धुरबे तो धुरबे हाथी 9 मील चलकर इनके घर वापस पहुंचा है वहां जाकर बहू और उनके पोते की जान ले ली है जो मरने वाले थे उनकी बहू और पोते की जान ले मतलब हो गए पूरे 4 ना जाने ये कैसी दुश्मनी थी धुरबे को ये हाथी को अपने आई मीन ऐसे ही वो मालिक नहीं थे मतलब के ऐसे ही गांव वालों में से इनको ही चुना कि इनको ही मार मार के मार दूं

0: तो अश्विन दोषी ये राजेश खन्ना है?
1: यस वेरी मच वेरी मच. वो जो जो उनका टाइम था 69 टू 71 में,
0: अच्छा,
1: ही गिव 15
0: हिट्स. ओह माय गॉड,
1: दिस इज वन ऑफ द हाथी मेरे साथी.
0: अच्छा, हाथी मेरे साथी. ओके
1: यस, साथ में तनुजा थी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक था. बस फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी. पर
0: ये अच्छा हाथी था.
1: सबको पसंद पड़ा और फिल्म हिट हो गई. पर
0: क्योंकि जानवरों के साथ सबको होता है.
1: डिफिकल्ट टू मैनेज देम एंड टू डिसिप्लिन देम एंड टू गेट एक्टिंग आउट ऑफ देम.
0: एग्जैक्टली. आई डोंट नो हाउ दे डिड इट.
1: यस, आदमी होता तो उसको समझा सकते हम, लेकिन जानवर को कैसे. लेकिन दे डिड इट very well, Parvin ji.
0: अच्छा.
1: Yes.
0: साथ हीरो भी अच्छी एक्टिंग और हाथी की भी अच्छी एक्टिंग.
1: Yes, definitely, definitely. और Parvin ji, मुझे कृष्ण सरोई को वो विश करना है, उनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी है ना.
0: Yeah.
1: तो प्लीज ऑन माई बिहाफ गिव ग्रीटिंग्स एंड कांग्रेचुलेशंस.
0: बहुत शुक्रिया.
1: थैंक यू.
0: थैंक यू. और यहाँ कहाँ पर क्या करने के लिए हम आए हुए हैं, यही कि रसीला कहती हैं कि आपको पता है कि मदन मोहन, उन्होंने ओवर अ 25-year करियर ही कंपोज्ड 700 सॉन्ग्स फॉर फिल्म्स लाइक वो कौन थी, मेरा साया, हीर रांझा. कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर थे मदन मोहन. रसीला, बहुत शुक्रिया आपका. इंडियन वेडिंग संगीत कहते हैं कि द श्रीदेवी सॉन्ग वॉज रियली बिकम एन एंथम ऑफ इंडियन. ओके, वेडिंग सॉन्ग जो आपने सुना है अभी. ओके, द एलिफेंट नेवर टारगेट्स. अमीर अली राना कहते हैं कि ये टारगेट नहीं करता, निशाना नहीं बनाता इंसानों को. दीज पीपल मस्ट हैव ट्रीटेड द एनिमल क्रूअली. पूरी वीडियो नजर आ रही है, कुछ नहीं कर रहे थे. दे वॉन्ट इवन गिविंग हिम मच अटेंशन. अमीर अली राना, वीडियो में देखा जा रहा है कि दे आर इन नो वे एंटाइसिंग हिम और अनोइंग हिम. यासर की बात थोड़ी देर के बाद.
2: दिस इज ईस्ट एफएम, केन्यास प्रीमियर एशियन मिक्स. ईस्ट एफएम, केन्यास प्रीमियर एशियन मिक्स.
3: इट्स 11:19.
4: Why is the Star Kenya's biggest newspaper? Because the Star circulates 100,000 copies. And why is the Star Kenya's boldest newspaper? Because the Star brings you stories no one dare touch. That is, 100,000 copies of Kenya's biggest and boldest newspaper. 100,000 copies in circulation. 100,000 copies of the Star right there where you are. 100,000 copies of the Star, right there where you are. Grab a copy of the new, boldly reimagined and revamped Star newspaper, because smart people read the Star.
5: East FM.

0: और समिन, ये जो है कातिल हाथी, इसकी बात यासर ने भेजी है लिख कर. कहते हैं अकॉर्डिंग टू अभिनाश थापा मागर, इंफॉर्मेशन ऑफिसर एट चितवन नेशनल पार्क, दुर्बे हैज किल्ड एट लीस्ट 25 पीपल सिंस 2010. अच्छा, आप 16 साल इंतजार कर रहे हैं कि हाथी मारता जा रहा है, आप उसका कुछ नहीं कर रहे. मेकिंग हिम वन ऑफ द मोस्ट डॉक्यूमेंटेड प्रॉब्लम एलिफेंट्स इन द वर्ल्ड. कहते दुनिया में धुरबे जैसा कातिल हाथी नहीं है, इसकी एक एक हरकत को लिखा जा चुका है. लेकिन समय ये आजाद था कि औरों को भी मारो. जब तक कितने मिल गए हैं, 25 मर गए हैं. और कहते हैं सैटेलाइट ट्रैकिंग कॉलर, समझिए ये कॉलर होता है जो जानवर के गले में डाल देते हैं, फिर उसकी हरकतों को देखा जाता है, कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहा है. हिज मूवमेंट्स मॉनिटर्ड, हिज मूवमेंट्स कन्फर्म्ड, ही वॉज पोजिशन डायरेक्टली अराउंड द बोटे फैमिली होम द नाइट ऑफ द अटैक. जिस दिन बहू और पोते को मार दिया, उस दिन ये उनके घर के बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था. समिन, आप कहते हैं साजिशी नहीं है, ये साजिशी हाथी कातिल भी था और साजिश भी था. इसने बनाया हुआ था मंसूबा मारने का. सोनल, आपने हाथी का गाना बहुत पसंद किया है, अच्छी बात है, आपने एंजॉय किया है.
1: मेरे मतलब कृष्ण सारे वेडिंग हैप्पी एनिवर्सरी
0: कृष्ण सारे को जितेंद्र की जानिब से. और रसीला, आपने कहा है कौन आया मेरे मन के द्वारे, इज अ हिंदी लैंग्वेज सॉन्ग एंड इज संग बाय मन्ना डे, रिलीज्ड 1950. शुक्र है रसीला, आपको भी पसंद आया है और ये मंजुला गोरसिया को याद आया था. समझ ना, आज का जो है मुहावरा वो सांप पर है. सांप यानी स्नेक. अब सभी कहेंगे आस्तीन का सांप, या ऑफ कोर्स दैट इज करेक्ट. लेकिन अब इसके अलावा और कोई अच्छा सा अननोन, कोई यूनिक सा आपने देना है मुझे मुहावरा ऑन सांप.

0: यू वेरी मच, टेक केयर, गुड डे.
1: ओके, लेकिन अगर उस तरह का मुहावरा बनाना है कि दूध का जला, तो फिर क्या कर सकते हैं? आप खुद भी बना सकते हैं. दीपक वडगामा, सांप ना मरे और लाठी भी ना टूटे, वो हो गया है बिल्कुल, थैंक यू. भरत गंगाराम इन लंदन, सांप के मुंह में उंगली डालना और सांप सूंघ जाना, बिल्कुल सही है दोनों. सांप के मुंह में या मगरमच्छ के मुंह में भी उंगली डालना, हाथ डालना. ओके, यास्मिन एंड मेजर वांजा, शुक्रिया. बिंदु,
2: सांप का काटा पानी नहीं मांगता.
1: ओके बिंदु, पानी नहीं मांगता, लेकिन एक और भी है इसी तरह का मुहावरा है, पर पहले आप सुनते हैं इनको.
3: एक गुजराती कहवत छे के संघरेलो सांप पण काम आवे, એટલે આજે તમને જે નકામી લાગતી વસ્તુ હોય ને એ એની પણ તમને ક્યારેક જરૂર પડી શકે છે. સોનલ ફ્રોમ મુંબાસા.
1: લેકિન મેને સુનના હે કે આપને કિસ તરહ કા સાંપ કહા હે.
3: એક ગુજરાતી કહેવત છે કે સંઘરેલો સાપ પણ કામ આવે, એટલે આજે તમને જે નકામી લાગતી વસ્તુ હોય ને એ એની પણ તમને ક્યારેક જરૂર પડી શકે છે. સોનલ ફ્રોમ મુંબાસા.
1: संग्रेलु, अच्छा संग्रेलु मेरा ख्याल है यूजलेस होगा या कुछ इस तरह से. ओके, काटो तो खून नहीं, बिल्कुल, लेकिन इसमें सांप नहीं रितु. ओके, अमीना फ्रॉम मैनचेस्टर, माय दुआज फॉर रेखा वालिया, मे अल्लाह गिव हर गुड हेल्थ एंड शी रिकवर्स सून. आमीन आमीन अमीना. और जबीन हिरानी, Never let the same snake bite you twice. English की कहावत अच्छी है. सब मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगी कि वो जो मैंने कहा था कि इस तरह का बना लें आप, कि सांप का काटा रस्सी से डरता है, क्योंकि रस्सी भी फिर कभी सांप की तरह होती है ना, तो सांप का काटा रस्सी से डरे.

0: मिसेस पटेल आपने एंजॉय किया है ये गाना आपके दौर का था वो जो दूध का था मुहावरा वो हमने बता दिया था मिसेस धंजल क्या कहती हैं
1: हां जी प्रवीण जी आपका जवाब है सांप का काटा हुआ रस्सी से भी डरता है थैंक यू वेरी मच टेक केयर गुड डे मिसेस धंजल
0: मिसेस धंजल देन इट मींस यू वर द ओनली वन टू गेट द आंसर यानी सांप का काटा रस्सी से भी डरता है वेल डन बहुत खूब और आगे आए हैं कौन अजय पाल
2: परवीन जी दो तीन दिनों के बाद तबीयत कुछ ठीक नहीं थी ठंड सी लग गई थी खैर सांपों की बात चल रही है परवीन जी तो कुछ कहना चाहता हूँ अहबाब अहबाब दोस्त को कह रहा अहबाब को शिकायत है कि मेरा लहजा जहर सा है अहबाब को शिकायत है कि मेरा लहजा जहर सा है उन्हें क्या मालूम कि मेरे आस्तीन में सांप पलते हैं चलते चलते कैसे डसेगा कौन जानता हूँ मैं कैसे डसेगा कौन जानता हूँ मैं लेकिन किसी का खौफ कहाँ मानता हूँ मैं कैसे डसेगा कौन जानता हूँ मैं लेकिन किसी का खौफ कहाँ मानता हूँ मैं जंगल हो या फिर आस्तीन की जंगल हो या फिर हो आस्तीन की सांपों की सारी नस्लों को जानता हूँ मैं बहुत बहुत शुक्रिया मुलाकात होगी जल्द परवीन जी धन्यवाद जी आप जिस मुहावरे की बात कर रही हैं वो है सांप का काटा पानी भी नहीं मांगता शुक्रिया
0: क्या बात है अजय पाल कहते हैं मैं सारी नस्लों को जानता हूँ सांप की तमाम नस्लों से वाकिफ हैं गेट वेल सून अजय पाल दर्शन सिंह लोटे आप कहते हैं कि सलाम आग का जला दूध को हवा मार कर पीटता है अच्छा एक्चुअली एक और भी है सांप पर मैं आपको थोड़ी देर में पूछती हूँ
3: Assalamualaikum Praveen ji, Salim Meher from London. People who uplift you are the best kind of people. You don't simply keep them, you have to treasure them. Good morning Praveen ji to you and all.

0: How beautiful is this track, and Kamara absolutely loves this tune. Thank you so much for your wonderful company. So, moving ahead in relationships, would you enjoy your singlehood if you've been in the relationship for a long time, or would you give love and companionship another chance? I've got a message here saying that I'd be open to a new person, but trust would have been earned slowly through consistency, and it is also give and take. It's not one-sided. So as much as the other person is involved, I need to be involved as well. And for me to be involved 100%, I need to have that trust in that person. From my side, there is it takes a lot, because if I've been single for a while and again to get back in that mix, it takes a lot out of person. So mentally be prepared for it as well. I've got another message here which I would end this session with today, is that I choose both. Preeti, thank you for that. Enjoy my own company and stay open to someone who proves they're worth trusting. That is absolutely beautiful. Let's get into the next hour of the show. Keep it East FM.
1: East FM, Kenya's premier Asian mix. With news from Kenya, Asia, and around the world, this is East FM News, presented by Parveen Adam.
2: ईस्ट एफ एम मंगलवार 14 जुलाई दिन 2 बजे की खबरें. पहले खबरों की सुर्खियां. शाह और अफोर्डेबल हाउसिंग की तारीफ. टीचर्स यूनियन की शिकायत शाह को लेकर. बैंकॉक में आग, 28 की मौत. साउथ अफ्रीका से 53,000 गैर मुल्कियों की वतन वापसी. खबरें तफसील से. सदर विलियम रूटो ने यूनिवर्सल हेल्थ केयर पर जोर डाला है कि केनियन शहरियों का हक है कि उन्हें आला मायार का इलाज मयसर हो. आपके मुताबिक सोशल हेल्थ अथॉरिटी शाह ने 31.7 मिलियन केनियंस को रजिस्टर कर लिया है मेडिकल कवर के लिए. वहां टीचर्स की यूनियन का कहना है कि उस्तादों को इलाज की सुविधा नहीं दी जा रही जो कि उनकी कंट्रीब्यूशन से मिलती हो. अस्पतालों में टीचर्स खुद इजाफी बिल अदा कर रहे हैं. सदर रूटो ने एक बार फिर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम को सराहा और कहा शहरियों को बेहतर मकान मुहैया किए जाएंगे जिनमें बिजली और पानी की सहूलत होगी. पक्की सड़कों को भी यकीनी बनाया जाएगा. आलमी खबरें. बैंकॉक के शराबखाने में आग लगने से 28

0: शहरी मारे गए और 23 खतरनाक हालत में भर्ती हैं। चाटुचक जिले की बार में स्टेज के नजदीक आग शुरू होकर फैल गई। आग बुझाने वालों ने जल्द काबू पा लिया। ज्यादातर मरने वाले बाथरूम में बचाव के लिए इकट्ठे हो गए थे। साउथ अफ्रीका से अफ्रीकी विदेशियों को निकाला जा रहा है। 53,000 को वापस मलावी, जिम्बाब्वे और मोजम्बिक भेज दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका में गैर मुल्कियों के खिलाफ एहतजाज तेज होता जा रहा है। गाना, नाइजीरिया, युगेंडा और केन्या ने अपने शहरी बुलवा लिए हैं। स्पेन और यूनाइटेड किंगडम के दरमियान सरहद पे पाबंदियां हटा दी जाएंगी। दोनों ममालिक के शहरी एक दूसरे के मुल्क बगैर दुश्वारी दाखिल हो पाएंगे। 8 नस्लों से सीमा पार करना मुश्किल था। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की बहन अलीमा खान ने भाई की रिहाई की तहरीक शुरू कर दी है। पहली अवामी रैली का आगाज कर दिया। चित्राल में अलीमा खान का शानदार इस्तकबाल किया आवाम ने। आपने तकरीर में कहा कि इमरान खान के हुकूक दिलवा कर रहेंगे। तमिलनाडु सरकार को राहत दी है सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के हुक्म को रोककर। हुक्म में कहा गया है कि गाय को जिबा नहीं किया जाएगा तमिलनाडु में बकरे ईद या किसी और दिन। कंप्लीट बैन पे अब अमल नहीं होगा। सन 58 का कानून गाय के स्लॉटर की इजाज़त देता है खास हालात में। ये थी आज की खबरें। मैं हूं परवीन आदम।
1: The vibe is still strong. The energy is still high. From retro magic to today's biggest hits. This is Retro to Right Now with Nilufar.
2: The world is revolving and evolving at the same time. There's a lot that's going around besides...

0: माँ के लाडले को माँ के पास ही रहने दो. वेर यू नीड टू हेड ऑन इज ऑन द 25th ऑफ जुलाई एट KICC. नाउ इफ यू हैव बीन हियरिंग पीपल टॉक अबाउट द अगावे अफेयर एंड वंडरिंग ऑल द एक्साइटमेंट इज अबाउट, इट्स टाइम फॉर यू टू फाइंड आउट. सो ऑन सैटरडे 25th जुलाई KICC विल होस्ट वन ऑफ नैरोबीज मोस्ट एक्साइटिंग प्रीमियम लाइफस्टाइल एक्सपीरियंसेस. यू कैन एक्सपेक्ट क्यूरेटेड टेस्टिंग्स, lovely music, incredible entertainment, amazing vibes and unforgettable company all in one spectacular setting. And the tickets are very reasonable, only 1,500 shillings for individual. For a squad package of five, it's available for 6,000 shillings. And those who grab the mystery tickets already know something really, really special is coming their way. So now it's your turn. Visit ticketyetu.com, the Agave Affair, and secure your spot right away.
1: 90s Car Rewind.

0: मैं हूं टेकन ऑफ द मूवी मातृभूमि प्लेइंग फॉर ईस्ट एफएम केनिस प्रमेशन मिक्स दिस इज द सिटी लाइट्स विद विशाल और हम बात करें अबाउट स्ट्रेस एंड हाउ डू यू मैनेज द प्रेशर. सो पीपल ऑफन थिंक दैट यू नीड अ हॉलीडे टू बीट स्ट्रेस बट व्हाट इफ यू ओनली हैव 10 मिनट्स. मोस्ट ऑफ अस कांट डिसअपीयर टू अ बीच एवरी टाइम लाइफ गेट्स ओवरवेलमिंग. समटाइम्स द बिगेस्ट डिफरेंस कम्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट हैबिट्स. A short walk, a favorite song, a cup of tea, calling a friend, or sitting quietly before the day gets busy. So tell me your 10-minute stress reset. कौन सी ऐसी चीज है अगर आपको स्ट्रेस हो जाए, what do you do? How do you reset in 10 minutes? You can share your answers with me on 0701-106-106. Coming up next is going to be your Mix of Beat Challenge.
1: This is East FM, Kenya's premier Asian mix.

बोलना प्लेइंग फ्यूनिस एफएम गेनिस प्रमेशन मिक्स दिस इज द सिटी लाइट्स विद विशाल एंड हम बात कर रहे हैं अबाउट पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो कि आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत ही जरूरी चीज है अक्सर करनी चाहिए सबको सो इफ यू कुड मीट द वर्जन ऑफ योरसेल्फ फ्रॉम वन ईयर अगो व्हाट वुड सरप्राइज देम द मोस्ट अबाउट हु यू आर टुडे वी आर ऑफन सो फोकस्ड ऑन वेयर वी आर गोइंग दैट वी फॉरगेट to appreciate how far we have already come. Maybe you've become more confident. Maybe you learned to say no. Maybe you have healed from something that once felt impossible. Growth isn't always loud. It can be quiet, steady, and deeply personal. So right now, we are celebrating progress. What's one way you have grown in the last year. I'd love to hear your story. And right now, time is for the Translate Challenge. And jahan pe main aapko bhi ek movie bataunga in English. And you have to tell me which is this movie that I am looking for in Hindi. And it's a one-word movie in Hindi. And in English,